देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

First of all, before I start my welcome address, I would like to take the permission from Honorable Swamiji and Dharmadhikari ji that I would like to speak in Hindi, if you kindly permit me. Thank you, sir. सबसे पहले मैं मंच पे आसीन भारत की वो महान हस्ती परम पूजनीय स्वामी जी का एक बार सभी तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन कीजिए. आज स्वामी जी वो महान हस्ती हैं. हमारा सौभाग्य है कि इस तीर्थ स्थान पर हमें उनके दर्शन करने का मौका मिला है और आप सबकी तरफ से धर्माधिकारी परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस तीर्थ स्थान पर हमें बुलाकर इतना हम लोग इनका जिंदगी भर आसान नहीं भूल सकते कि इन्होंने जहां पे लोग लाखों रुपया खर्च करके दर्शन करने में लाइनों में खड़े होते हैं, वहां पर धर्माधिकारी जी ने हमारे इन बच्चों के लिए, हमारे ऑफिशियल के लिए मात्र यहां पर हमें दर्शन नहीं करवाए, इतनी सुंदर अंतर्राष्ट्रीय यहां पर प्रतियोगिता, सेमिनार, वर्कशॉप, क्लिनिक का भी धर्माधिकारी जी ने बहुत सुंदर ढंग से इतने डिसिप्लिन के साथ यहां पे आयोजन किया. हम आप सब बच्चों की तरफ से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए यहां प्रतिभागी, उन सब की तरफ से 8-10 प्रदेशों से, देशों से यहां पर जो आज पार्टिसिपेंट्स, हमारे डेलीगेट्स आए हैं, उन सब की तरफ से हम धर्माधिकारी के जी के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करना चाहेंगे और आशा करना चाहेंगे कि वो अपना आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बनाए रखें, ताकि ये धर्मस्थल, जिसका नाम ही ऐसा है धर्मस्थल, और यहां पर आकर हर कोई आदमी, आप देख रहे हो पिछले 3 दिनों से हम यहां हैं कि कैसे लाइनें लगी हुई हैं, कैसे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमें आपने स्वयं यहां बुलाया. और बुलाया ही नहीं, हमारे ठहरने की इतनी स्वामी जी इन्होंने व्यवस्था की है कि 5-स्टार होटल्स में भी ऐसी व्यवस्थाएं अवेलेबल नहीं होती. खाने के लिए ऐसा स्वात्विक भोजन और उसका इंतजाम, मैं अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, हमारी बनिया कम्युनिटी में शादी के समय जैसा इंतजाम होता है, वो इंतजाम परम आदरणीय स्वामी जी ने, इन्होंने, हेगड़े जी ने, यहां पर धर्माधिकारी जी ने हमारे बच्चों के लिए खाने की जो व्यवस्था की है, हम सर भूल नहीं सकते. ऐसा स्वास्थ्य भोजन वास्तव में योग की दिशा पर चलकर जो खाया जाता है, वो भोजन इन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे डेलीगेट्स के लिए. और कल रात हमें पता लगा, हर पार्टिसिपेंट को इन्होंने ट्रैक सूट बांट दिए. कब ये क्या फैसला करते हैं, ये कोई धर्माधिकारी ही कर सकता है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता. और यहां पर आज से 5 वर्ष पूर्व भी हमें आने का मौका मिला था, तब भी यहां पर जो प्रतियोगिता इन्होंने कराई थी, एक इट वॉज ए माइल स्टोन इन द फील्ड ऑफ नेशनल योगा चैंपियनशिप. सर, हम 1974 से योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया सेटअप की है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हम कभी नहीं करवा पाए जो धर्माधिकारी जी के आशीर्वाद से यहां पर एक भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं.

0: में अगर कोई बीमार हुआ है उसके लिए तुरंत डॉक्टर अवेलेबल हैं। यहां तक यहां से मैंगलोर बेंगलोर बाय एयर जो हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं अपनी एसी बसेस इंतजाम करके हमारे पार्टिसिपेंट को बेंगलोर से मैंगलोर से उनको यहां लाया गया। रात को अगर कोई लेट हो गया तो उनका बेंगलोर में मैंगलोर में होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट ऑफिशियल की तरफ से आपकी जो एक मार्वलस टीम है इतनी वंडरफुल आपके डेडिकेटेड आपके हमने खाना जहां खाया है इतनी स्मार्ट गर्ल्स जिन्होंने इतने प्यार से हमारे सभी डेलीगेट्स को खाना खिला रहे हैं हम भूल नहीं सकते। घर में जैसे माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है उस तरह आपके ये बच्चे हमें खाना खिला रहे थे। हमें उनसे खाना खाते समय अपनी माँ याद आ रही थी कि मैंने उनको स्पेशली कहा है कि आप आज एक माता के रूप में हमारे सामने अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो। तो मैं आप सबकी तरफ से यहां के इंतजाम के बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। डिक्शनरी ढूंढा चाहे इंग्लिश हिंदी किसी लैंग्वेज में भी ऐसा कोई शब्द नहीं बना जो हम बोलकर आपके चरणों में प्रणाम कर सके। मैं एक बात पुनः और आप 50 वर्षों से धर्माधिकारी के पद पर हैं हम अब आपकी गोल्डन जुबली है हम उसके लिए भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और सभी एक बार पुनः तालियां बजाकर धर्माधिकारी जी के 50 ईयर गोल्डन जुबली के उपलक्ष पर भी हम इनको अपना उनके चरणों में प्रणाम। ये जो सिल्वर जुबली फंक्शन यहां आयोजित हो रहा है सर हमने केरला में फर्स्ट फेडरेशन कप वहां आयोजित था तो इनके मिस्टर शशिकांत जैन इनके बिहाफ से मेरे से बात करने लगे कि अग्रवाल जी हम चाहते हैं एक सिल्वर जुबली फंक्शन वहां हो। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें भूखे को क्या चाहिए खाना। अब हमारे घर में आकर आपने अपना दूत भेजा जिसने हमें कहा कि हमने फंक्शन कराना है हमारा कोई पैसा खर्च नहीं सारी व्यवस्था आपकी खाना आपका ठहरना आपका और हम यहां से शान से आकर इस फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य था जब शशिकांत जैन ने आपके माध्यम से हमें आके ये अनुरोध किया हमें इतनी खुशी हुई कि ये फंक्शन और तब से बच्चे इंतजार कर रहे थे कब वो दिन आएगा जब हम धर्मस्थल में पहुंचकर यहां पर आएंगे। आपने दर्शन के लिए अलग से VVIP हमारे बच्चों के लिए दर्शन करने के लिए जहां लोग लाइनों में लगे हुए हैं हमारे बच्चे सीधे जाते हैं दर्शन किए प्रभु के और बाहर आ जाते हैं उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक इन सब की ओर से मैं धर्माधिकारी जी के लिए एक अनुरोध करना चाहूंगा आज इस उपलक्ष पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मना नहीं करेंगे हमारे सभी पार्टिसिपेंट का। सर यहां जो बच्चे हैं ये सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको हमने निमंत्रण दिया है इनके बिहाफ से हम आपको योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लाइफ पैटर्न बनाना चाहते हैं ताकि आपके आशीर्वाद से हमारी योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया और आगे बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री परम आदरणीय पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को इंटरनेशनल योगा डे के नाते सारे विश्व में प्रचार किया। हम आपके आशीर्वाद से चाहेंगे कि ये योग जो योगा फेडरेशन इंडिया वर्ष 1974 से सारे देश में काम कर रही है एशियन योगा फेडरेशन 2010 से हम एशियन कंट्रीज में जाके ये इसका संदेश बन जाते हैं। मैं वर्ल्ड योगा बॉडी का भी सेक्रेटरी जनरल हूं और हमने आपके आशीर्वाद से कम 80 बार विदेशों में जाने का मौका मिला है लेकिन जिस दिन हमारे पैड पे धर्माधिकारी जी का नाम आ जाएगा मुझे विश्वास है कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं बचेगा जो योग के लिए आगे बढ़कर नहीं आएगा। हम आपके माध्यम से सारे विश्व में जाना चाहते हैं भारत की इस प्राचीन संस्कृति भारत की ये इंडिजिनस स्पोर्ट्स और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी ने एक बार मैं आयुष मंत्री हमारे नायक साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं। सर मेरा आपको भी प्रणाम है और सबकी तरफ से, क्योंकि आप सरकार में एक ऐसा पिलर हो, आपकी जब कलम चलेगी तो सारे देश में योग का प्रचार हो जाएगा। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप भी एक पैटर्न के नाते हमारे संघ से, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, पिछले 43 ईयर से देश के कोने कोने में योग का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से। हमने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, धर्माधिकारी जैसे सज्जन पुरुष महान हस्तियां हमें मिलती हैं जो ये व्यवस्थाएं कराते हैं। हमने कभी गवर्नमेंट में कोई ग्रांट नहीं ली, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया। उसके बगैर सारे देश में 43 वर्षों से हम योग का प्रचार कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय आपके पास है, इस मंत्रालय के आप मालिक हैं, आपके आशीर्वाद से आप भी हमारे साथ इस फेडरेशन के पैटर्न के नाते साथ जुड़िए और हम देश का कोई शहर नहीं छोड़ेंगे जहां पे योग नहीं होगा। भारत की संस्कृति, एक बार सभी जोर से तालियां बजाकर श्रीपद नायक जी के भी स्वागत में आप प्रणाम कीजिए और इनको विश्वास दिलाइए कि देश के हर कोने में योग होगा। भारत की संस्कृति, भारत की प्राचीन संस्कृति, जो महान स्वामी जी जैसे इन महान पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से हम सारे देश में, विदेशों में, हर जगह हमारी योग संस्कृति जाएगी। जो हमारे डेलीगेट्स 10 देशों से यहां आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे निमंत्रण पर यहां आए हैं। हिंदुस्तान के कोनों कोने से जो यहां पर हमारे प्रतिभागी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, सभी ऑफिशियल का स्वागत करते हैं, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, एशियन योगा फेडरेशन के तमाम पदाधिकारियों का हम स्वागत करते हैं और विशेषकर हमारे प्रेस बंधु। सर अगर आपकी कलम नहीं चलेगी, आपकी कलम नहीं चलेगी तो हमारा कोई काम नहीं चलेगा। तो मेरे प्रेस बंधुओं से प्रार्थना है, आप 4 दिन यहीं पर रहिए, आप देखिए ये बच्चे आपके सम्मुख योग, हमने सिर्फ आसन नहीं करते, योग आसन है, आर्टिस्टिक योगा है, आर्टिस्टिक पेयर योगा है, रिदमिक योगा है, फ्री फ्लो योगा डांस जो आजकल आप टीवी पे शो देखते हो, डांस इंडिया में ऐसे कार्यक्रम यहां आपको दिखाएंगे और आपकी लेखनी के माध्यम से, आपके प्रेस बंधुओं के माध्यम से सारे देश में ये मैसेज आएगा। इन शब्दों के साथ एक बात पुनः मैं परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, धर्माधिकारी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मंच पर हाजिर तमाम उच्च पदाधिकारियों से, तमाम महानुभाव से, योग प्रेमियों को भी मैं प्रणाम करता हूं और ये बच्चे जो आए हैं, विशेषकर इनके पेरेंट्स को, इन बच्चों को मेरा प्रणाम। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता जी, वंदे वंदे। प्रणाम सर।
1: थैंक यू वेरी मच सर। His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Shri Swami Maheshwarananda Ji.
0: हम स्वामी जी को योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया और एशियन बॉडी की तरफ से एक यादगार प्रदान करना चाहेंगे।

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुर जी महादेवाय की जय हो। अलकपुर जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयानंद पुरी जी गुरुदेव की जय।
0: हे वेयर द एयर इज गोइंग, एयर इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू। यू कैन पुट इन नियर महाप्रभु जी हियर मे बी यू हियर। ओह महाप्रभु जी देयर for you, very good. Okay. Yeah.

हायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयत् शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत् पुण्डरीकं मध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं यत्

heart, I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out, sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. बाबा जी गांव के अंदर आए, देखा कि शंकर का मंदिर, जब पुजारी को कहा कि रहने के लिए जगह है कि ये कमरा है साधुओं के लिए, वहां रुक गया। शाम को आरती में आए, भगवान शिव की बहुत सुंदर एक मूर्ति थी सोने की, करीब 5 किलो की। आरती हो रही थी, सोना चमक रहा है। बाबा जी तो देख करके पागल हो गए कि जिंदगी में इतना सोना कभी देखा ही नहीं, कितना जल्दी इसको लेके चला जाऊं पार करें। रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया। 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं। घंटी बजाई जोर जोर जोर से, तो गांव के लोग दौड़ करके आए। 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा, टेम्पल डोर वॉज ओपन, शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार। He rang the bell long and the village people were running, coming, what happened? Strong people like Jasraji and Premananji, and they were running, came, what happened Panditji? Statue is stolen. Do you know anybody? Came, I don't know any. If I stay anybody here, came, one sadhu is staying in the room. They went there, there is no sadhu. They took the torch light, they saw the steps running. That time was no concrete CC road, you know. There was only sand road. Sandy road, so young people were running, and Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए, देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई। पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर, कोई यहां आए थे क्या? बोला एक महाराज रुके हुए और कोई नहीं है। जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं, बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए। उस समय ये सीसी रोड, डामर की रोड होती नहीं थी। किधर भगा, देखा उनके पैरों के चिन्ह, तो बहुत से लोग उधर, जवान लोग दौड़े। जाते जाते 4 बज रहे थे और प्रभात हो गया, भोर हो गया क्या? नहीं, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। गाते हो कि नहीं?

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहां जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषाकाल ब्रह्म मुहूर्ता, बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत है। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी, हा तपस्या टीज पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते, आ तू जल्दी कर स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन्ड, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। डॉन केम एंड द बाबाजी लुक बिहाइंड, दे आर रनिंग सम बॉडी बिल्डर्स। नाउ व्हाट टू डू, इफ आई विल टेल, बाबाजी इज थिंकिंग that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours, after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always luck in bad luck. There was a beautiful lake. So he ran into the lake and began to bathe the Lord Shiva. And people came, thief, thief. He said, stop, silent, don't talk. Lord Shiva came in the night to me and said, so many years I did not bathe. The village people prisoned me in the temple. Please, Swamiji, can you help me to bathe? So I promised him, before sunrise, we will bring you back to your holy place. So come quickly, wash him. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Harar Gange Mahadev, Harar Gange, Gange, Gange, Harar, Bhole Shambhu, come on. Whoever was giving water, washing the Shiva, running back and brought Bhagavan Shiva statue, fixed there, and begins to do aarti.

से प्रेम का प्याला प्रभु कब मेरा। गुरुजी सेड देयर इज अ नेवर एंड फ्रॉम दिस डिवाइन नेक्टर डिवाइन लाइट एंड इज सो स्ट्रांग। सो आई सेड गुरुजी कैन आई गिव यू वन सजेशन। गुरुजी सेड यस। I said, then, don't imagine Mahaprabhuji here in Agya Chakra because you give too much tension here. Go in the heart and have him in the heart. Okay. What Guruji said? Okay. Next day when I came, Guruji said, Mahesh, you confused everything. I said, what? I transport the Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anahat Chakra. Now, this settlement from transport from Jadan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Agya Chakra or Anahat? Anahat Chakra or Agya Chakra? So, but I asked him, have you the headache? He said, no headache, but confusion. Better I should have a headache than such a feelings. So, but after some time, Guruji said to some people, Mahesh have transferred Mahaprabhuji from Agya Chakra to Anahat, from Agya Loka to Anahat Loka. But he said he have stayed his sabi. Then what he said, he held the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Agya Chakra. There is different seva, different things. Then Guruji said when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva, 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana aa gaya, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लगता है मेरा। हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मार्पणम। हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश, मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता, तो 3-4 बार गुरुजी फरमाए बोला। तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान? तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है। तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप।
दूसरे दिन आया तो बाबू जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी मैं, क्यों कि महाप्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया अनाहत से आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो। मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को यह अनुभव होता है, गुरु जी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है, वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच नहीं रहा है। खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो, इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भरसी, दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, देन दिस रेडियंस द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड देन यू आर बियॉन्ड दिस ऑल मेटेरियल वाइब्रेशंस, फ्रॉम यू इज ओनली डिवाइन रेडियंस इज कमिंग, एंड एनी वन हु कम्स क्लोजर सिट्स राउंड यू गो राउंड द टेम्पल यू आर इन दिस अबमंडल इन साइड। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, अलग

स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।

वासुदेव नारायण भगवान की जय। आज की आनंद की जय। भक्त निमिया राय जी की जय।

0: ने की जय। श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी योगीराज की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय हो। माता की जय।
1: Om Sri Alakpurisha Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Sri Sri Deveshwar Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Om Bole Sri Deep Narayan Bhagavane.
0: Ki jai.
1: Sri Madhavananda Holy Guruji Sri Sata Gurudeva.
0: Ki jai.
1: Vishwa Guruji Paramahansa Maheshwarananda Yogiraj.
0: Ki jai.